19 वर्ष की महादशा, साढ़े साथी और ढैया का स्मरण हो आता है, जिसके कारण उसका भय निरंतर बढ़ता ही जाता है। किंतु जो शनि की आराधना, पूजा, अर्चना तथा भजन में अनुरक्त व्यक्ति हैं, उन पर शनि की महती कृपा होती रहती है। वे सभी सुख समृद्धि से आनंदित होते हुए शिव धाम को प्राप्त करते हैं। कहते हैं, स्थान वृद्धि करो शनि। शनि जब अपने 10वें, 11वें स्थान पर होता है तो व्यक्ति की उन्नति होती है, किंतु अन्य स्थानों से शनि की 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि घातक होती है। अतः शनि सदैव पूजा के योग्य हैं। आओ हम शनि की कृपा प्राप्ति के लिए शनि का ध्यान करें, पूजा करें, भजन और मनन करें। ओम शं शनिश्चराय नमः।

जैसे रवि के उदय से अंत काल मिट जाए। राम विवाह ने आई, राम विवाह ने आई जनक।

एक बार बोलो श्री महापति महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की। इट्स वेरी वेरी गुड टू सी यू एवरी वन ऑफ यू टुनाइट। कॉर्डियल वेलकम। लेट्स ऑल स्टैंड एट दिस टाइम एज वी हैव आवर फर्स्ट आरती।

महापति महादेव के, वृंदावन बिहारी लाल के, पवन सुत हनुमान के, अपना आसन लीजिए।

मुण्डलुब्रह्मरूपः व्यालोलगन्धस्थलम् दन्तागातविरारितारिर्ढिरे सेन्दूरक्षोभाकरम् वन्दे शैलसुतां सतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामडं हरि ओम्। थ्री फीत अब भगवान श्री गणेश, कोटि कोटि प्रणाम। सब विघ्नों के मिटाने वाले ओ भगवान श्री गणेश, रिमूव अवर ऑब्स्टिकल्स एंड डिफिकल्टीज। हु इन दिस वर्ल्ड डजंट हैव ऑब्स्टिकल्स। हरि ओम। रसप्रेतरी देवीज।